0: कारण माझा स्वामी कृपेसहित माझ्या हृदयात वसत आहे. वेदांचा अभ्यास आणि त्याचे श्रवणाचे सायास न करता प्रयत्नाशिवाय सद्गुरु कृपारूपी अमृतमय प्रसाद मला लाभला आहे. तसेच मराठी भाषेत ग्रंथ आहेत, पण त्याहूनही संस्कृत भाषेतील ग्रंथ आहेत. संस्कृत ग्रंथातही वेदांत ग्रंथ फार श्रेष्ठ आणि त्या वेदांतापेक्षा श्रेष्ठ दुसरं काहीही नाही, कारण त्यात सर्व वेदांचे सार प्रकट झालेले आहे. त्या वेदांतापरते काही सर्वथा श्रेष्ठ नाही, जिथे वेदगर्भ सर्वही प्रकट झाला. या समासामध्ये 75 श्लोक आहेत आणि यापुढील श्लोक आपल्या पुढील भेटीमध्ये आपण श्रवण करूया. आणि आता थोड्याच वेळात ठीक 6 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था. ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है. विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है.
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा.
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा. वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है.
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए. ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है.
1: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया. समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की. AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया. तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की. विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है. पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है. झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है. उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था. क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया. गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे. ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं. गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा. इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं. टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी.

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैसूर जिथे 24 तास झंकारत असतात अशी आकाशवाणी मुंबईची FM रेनबो वाहिनी।
1: ठीक 7:30 आपण ऐकू शकता राष्ट्रकुल स्पर्धेतील ठळक घडामोडी।
2: The Commonwealth Games
3: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे हैं। ग्लासगो में भला ही ठंड हो लेकिन हमारे एथलीट्स जोश जुनून और जज्बे के साथ भारत का नाम रोशन करने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तक के प्रमुख स्टार्स भारत की तरफ से रहे हैं मीराबाई चानू और शर्मिला धनकर। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। वहीं शर्मिला धनकर ने महिलाओं के F57 शॉटपुट में भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स का पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।
4: स्पर्धाओं के छठे दिन क्या फिर भारत के लिए कोई जादू की छड़ी चमकने वाली थी और कौन होने वाले थे वो एथलीट जो चमत्कारिक प्रदर्शन करके दिखाएं? भारोत्तोलन में अब तक जो भी भारतीय लिफ्टिंग हॉल में आया था उसने पदक का भार तो उठा ही लिया था। छठे दिन ये सिलसिला टूट गया। भारतीय मुक्केबाजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और अब पदक बस उनकी जद में आने ही वाले हैं। क्वार्टर फाइनल चक्र था, एक जीत यानी पदक पक्का। सिलसिले का आरंभ पहली बाउट से ही प्रीति ने कर दिखाया। एथलेटिक्स में चार भारतीय थे, 400 मीटर पुरुष में दो, ऊंची कूद में पूजा और 10,000 मीटर में गुलवीर। स्विमिंग में दो बड़े सितारे पूल में उतरे, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। लेकिन यहाँ पर मुकाबला इतना कड़ा है कि हीट्स को पार करने के बाद फाइनल में जगह बना लेना भी एक उपलब्धि बन जाता है। तो पैरा खिलाड़ी भी अपने संकल्पों को उड़ान देने में लगे हुए हैं। सारी चर्चा करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 के छठे दिन का लेखा जोखा। एथलेटिक्स में कल भी एक शानदार प्रदर्शन आया और इस बार ट्रैक से लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने इस साल चल रहे अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा और रजत पदक हासिल किया। 10,000 मीटर की स्पर्धा में गुलवीर ने इस साल अपना सबसे अच्छा जो समय निकाला था वो था 27:24.28। इसके हिसाब से मुकाबला खासा कड़ा दिख रहा था क्योंकि फाइनल में कीनिया के ही तीन धुरंधर 27 मिनट से कम समय निकाल चुके थे। तेज बारिश के बीच ये रेस आरंभ हुई। गुलवीर धुन के पक्के निकले, बारिश की परवाह किए बिना अपना रिदम बनाए रखा और अंतिम लैप में तो शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया 27:49.78 के साथ। स्वर्ण पदक पाया ऑस्ट्रेलिया के KY रॉबिन्सन ने 27:48.93 के साथ और कांस्य पदक मिला आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारके को। गुलवीर ने रवानगी से पहले ट्रेनिंग और उम्मीदों को लेकर कहा था,
5: अच्छी बेटर करेंगे अपना जितना जिस हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है जिस हिसाब से प्लान है कोच का अच्छा होगा।
4: बस ये लास्ट वाला। पुरुषों के 400 मीटर में दो भारतीय थे, उम्मीदें विशाल टीके से ज्यादा थीं और उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में हीट 6 में 46.49 सेकंड के साथ दूसरा स्थान पाया और क्वालिफाई कर लिया। हालांकि कुल मिलाकर 16 क्वालिफायर्स में वे 14वें स्थान पर रहे, यानी अगर पदक की उम्मीद जिंदा रखनी है तो आगे उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। इसके पहले हीट 3 में राजेश रमेश 47.73 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर आए और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहे, क्वालिफाई नहीं कर सके। महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह से बहुत उम्मीदें थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना। पूजा ने यहाँ पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा की कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।
3: A ray of sunshine for all the fans of weightlifting out there and definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kg category finals.

0: thereby taking the total medal tally to 7 in weightlifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put in a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
1: 1 year se sir mehnat kar rahe hain iske liye, result hai uska. Family ne bahut support kiya, down nahi hone diya kabhi, har time mera saath diya hai.
0: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kilogram in the women's 63 kilogram final after initially registering 115 kilogram. But she failed to complete all her 3 attempts in clean and jerk at 123 kilogram in the women's 63 kilogram final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
2: कल भारत के 5 मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए. 5 बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ 8 में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी. 1 जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है. कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है. कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड. प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था. तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि.
3: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
4: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, really nice.
2: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को. बस 2 दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घंघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती. स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया. हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा. अब तय होना था तीसरे राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा. एक के बाद एक उन्होंने जब 3 स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में. स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी.
3: द विनर इन द रेड कॉर्नर.
2: अब पिछले हंगचाओ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की. सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी. सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था. कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गई. नाम है जदुमणि सिंह. आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं. कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे. पंचेस, अपरकट्स, जैब्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि ने, और इसका परिणाम ये हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय. 6th दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया रेड कॉर्नर में. उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउल्टी. कपिल ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए. 5 में से 3 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए और कहानी तो अभी बाकी है.
0: India's para swimmers Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Buddigana and Ali Imam led India's campaign into the finals, recording a historic top 8 finish but narrowly missing out on podium placements at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. In men's 100-meter freestyle S13 final, in a thrilling race, Buddigana came agonizingly close to a medal, finishing joint 4th with a time of 56.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता न...

0: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
3: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
4: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
5: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला

0: माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में कुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं इसे आकाशवाणी मुंबई के केंद्र से एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, मुंबई शहर में सुबह सुबह काफी खूबसूरती होती है, यानी मैं कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा ये शहर सुबह के समय, है ना। खिली खिली सुबह, साफ की गई सड़कें, खुले रास्ते और खुला आसमां। इस खूबसूरत सुबह आप सभी प्यारे श्रोताओं का 107.1 एफएम रेनबो पर मैं दिल से स्वागत करती हूँ और मैं हूँ वैशाली। आज के इस हसी सुबह में हमारी लोकल ट्रेनों की रफ्तार और मरीन ड्राइव पर ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ ये नए दिन हमारे लिए ढेर सारी नई उम्मीदें लेकर आया है ये नया दिन। और आज हम बातें करेंगे देश दुनिया की कुछ अच्छे खबरों की और आपका दिन जो है बना देंगी ये खबरें, क्योंकि हाँ, इतना कुछ जो चल रहा है। तो दोस्तों, बात ऐसी है ना कि हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को ना ही हम अनदेखा कर सकते हैं और ना ही हमें किसी की बातों में आना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी पेचीदा, उन्हें हमें एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए। तो चलिए, अब हम और आप मिलकर बांटने वाले हैं ढेर सारी खुशियां। अब इस सुहानी सुबह को सुरीला बनाते हैं बेहतरीन गानों के साथ। आप बने रहें 107.1 एफएम रेनबो पर। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से ये भी कहना है कि आज के दिन की सबसे खूबसूरत और पावन बात ये है कि आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी ने बिल्कुल पोस्ट किया होगा सोशल मीडिया पर और अपने गुरुजनों को, माता पिता को, आपके शिक्षकों को बिल्कुल विश किया होगा और किसी किसी ने पांव छू लिए होंगे काम पर निकलने से पहले, या याद किया होगा अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे या अगर वो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारे संस्कारों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वे ही हमें अज्ञानता से, अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये पावन दिन महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी की जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्हें हम आदि गुरु मानते हैं। तो आइए, आज के इस पवित्र बुधवार को हम उन सभी शिक्षकों, माता पिता और मार्गदर्शकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया है। आप सबको 107.1 एफएम रेनबो की पूरी टीम की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज 29 जुलाई का दिन पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी बेहद खास है क्योंकि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से बाघों के संरक्षण के लिए बेहद शानदार प्रयास किए गए हैं। आज के दिन के विशेष बातों में इतिहास का एक और गौरवशाली पन्ना जोड़ते हुए आपको बता दूं कि आज ही के दिन साल 1846 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किया गया था। और भाई ये हमारे लिए काफ़ी यानी कि एक अच्छी खासी बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे अपने एयरलाइंस का होना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो भाई बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें और जो ज्ञान की बातें, यानी ऐसा नहीं है वो वाला ज्ञान नहीं जिससे हम सभी थोड़े से बोर हो जाते हैं, वो वाला नहीं, लेकिन वाकई जो सचमुच ज्ञान की बातें होती हैं, यानी कि जीवन को किस तरह जीना है और लाइफ कैसी होती है, आगे चलकर अगर हम जो है बहुत ही संभल कर आगे ना बढ़े तो क्या हो सकता है, ऐसा आपको जीवन का फलसफा कई सारे गानों में मिलेगा। खास करके हमारे पुरानी हिंदी फिल्म गाने जो थे वो ऐसे ही थे। और ऐसा ही एक और नगमा आप सभी के लिए पेश खिदमत है क्योंकि देखिए ना, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे मेंटर्स हमें यही बताते हैं, ऐसे ही ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें बताते हैं। तो सुनिए गाना, लुत्फ उठाइए, फिल्म धर्म करम से। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होत. एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जात. मद्यपान करून गाडी नको रे धरू. आई बाबांची स्वप्न नको भंग करू. झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा. आपलेच लोक वाट पाहती घरा. जीवन अनमोल आहे, वेग टाळा, सुरक्षित प्रवास हाच खरा.
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू.
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध. शर्तें लागू.
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन.
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

सारी बातें, और हमारे वो श्रोता भी जो हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से सुन रहे हैं, आप सभी के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बेहतरीन बातें यहाँ 107.1 FM रेनबो पर। दोस्तों, आज के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व तो मनाया जा ही रहा है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे भी मनाया जा रहा है। अब देखिए साथ ही साथ आज के दिन बहुत ही, यानी मैं सोचती हूँ कितनी अच्छी सारी बातें हुई है आज के दिन। तो देखिए, आज 29 जुलाई को भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती है जिन्होंने भारतीय उद्योग और विमानन क्षेत्र को नई पहचान दी। मैं बात कर रही हूं भारत के पहले आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त पायलट और भारत रत्न से सम्मानित उद्योगपति JRD टाटा साहब की, जिनका जन्म आज ही के दिन साल 1904 में हुआ था। टाटा साहब ने न केवल देश के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी, बल्कि व्यावसायिक नैतिकता और समाज कल्याण की एक अद्भुत मिसाल भी कायम की। हम सभी जानते हैं उनके बारे में, जितना बोले उतना कम है। और देखिए, मुंबई के कोलाबा से लेकर देश के हर कोने में फैले टाटा के संस्थानों में आज भी उनकी सादगी और राष्ट्र निर्माण की भावना रची बसी महसूस होती है, और उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सफलता वही है जो पूरे समाज और देश को साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सभी के बारे में सोचा, हमारे भारत के बारे में और हमारे भारतीयों के बारे में, और किस तरह हम दुनिया में आगे बढ़ें, आगे चलें और कुछ नया कायम करें, स्थापित करें, इसी की तरफ वो अग्रसर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, और हमेशा ही ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो आप सभी बने रहे आपके अपने 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मस्त मुंबई चल रहा है और कई सारी बातें हमारे देश की इतिहास के कुछ पन्नों से और कुछ बातें जो आज कल हो रही है, जैसे कि मैंने कहा कि आज है पर्व गुरु पूर्णिमा का और कितनी सारी बातें हैं जो कितने सारे लोग हमें सिखा कर बता कर जाते हैं और कुछ बातें हमें शायद खट्टी लगे, कुछ तीखी लगे, लेकिन होती है जरूरी और ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। दोस्तों आज का दिन खास ही है और बातें आज क्यों ऐसी है और क्यों आज का दिन खास है ये तो मैं आप सभी को बता ही चुकी हूँ। देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे है, गुरु पूर्णिमा हम मना रहे हैं और जो मैंने कहा बताया आपको बहुत सारी और चीज़ें भी रही। अब देखिए दोस्तों बहुत सारी बातें आप सभी से करनी है जो एक एक करके हम करेंगे ही, पर एक और बात जो बहुत जल्द मैं आपसे साझा करने वाली हूँ वो एक दो और महान हस्तियों के बारे में है। बस आपसे कहूँगी कि अभी के लिए बने रहें, सुनते रहें, आप सभी को एक से बढ़कर एक गाने हम सुनवा रहे हैं समय में थोड़ा सा पीछे जाकर। बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।
1: चल शुरू हो जा।

0: अरे बस बस बस बस, सा पे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, मस्त मुंबई चल रहा है और मैं हूँ वैशाली, आपके साथ बनी रहूंगी 11 बजे तक। तो दोस्तों, कई सारी बातें हमने की और थोड़ी बहुत यहाँ की भी बातें की, जो कि बनता है ना, क्योंकि बस मुद्दे की बात अगर हम करें, बस बहुत सीरियस बातें करें और ऐसी बातें करें कि भाई जो थोड़ी देर के बाद आपका मन भटका दे, तो फिर जो है मन को ना भटकने देने के लिए कुछ यहाँ वहाँ की बातें करना भी ज़रूरी है ना। तो भाई दोस्तों, और भी बातें हैं जो कुछ संजीदा सी है लेकिन बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण है। दोस्तों, जब बात हमारे महाराष्ट्र की गौरवशाली मिट्टी और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की आती है, तो एक नाम सबसे पहले हमारे जहन में गूंजता है। देखिए, आज 29 जुलाई को प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे जी की जयंती है। बाबा साहेब पुरंदरे ने अपने अद्भुत महानाट्य जानता राजा और ओजस्वी व्याख्यानों के जरिए शिव चरित्र के गौरव को महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने का अविस्मरणीय कार्य किया। इतिहास को इतना जीवंत और प्रेरणादायी बनाकर नई पीढ़ी के सामने पेश करने का उनका समर्पण वाकई बेमिसाल था। साल 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित इस महान विभूति को आज हम आदरपूर्वक नमन करते हैं। दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर ईश्वर के स्मरण और मधुर भजनों से होती है तो क्या बात होती है, और आकाशवाणी पर जो है आपको ऐसे ही संगीत से अपने दिन को शुरू करने का ये बहुत ही सुनहरा संगीतमय अवसर रोजाना मिलता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज जहाँ हमने इतने सारे कला उद्योग जगत के सितारों की बात की, वहीं देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों को याद करना भी हमारा परम कर्तव्य है। आज के दिन हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी वीरांगना अरुणा आसफ अली जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के इसी ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। आजादी के बाद भी वे निरंतर समाज सेवा में लगी रहीं और दिल्ली की पहली महिला मेयर बनकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित ऐसी महान देशभक्त महिला का जीवन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अखंड स्रोत बना रहेगा। तो चलिए, दोनों ही व्यक्तिमत्वों को, बाबा साहेब पुरंदरे जी को और जो है अरुणा जी को, हम नमन करते हैं और देश पर बने कुछ ऐसे गाने जो इतने बेहतरीन हैं वो सुनते हैं। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
3: आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई 107.1 FM Rainbow पर। और दोस्तों, कुछ दो तीन गाने देशभक्ति के सुनकर वाकई ये फीलिंग आई

कि बहुत जल्द हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त को हम ये आजादी का जश्न हर साल मनाते हैं और वाकई दिल जो है देश प्रेम के प्रति इतना ज़्यादा बढ़ता है, प्रफुल्लित होता है, इतना ज़्यादा प्यार जगता है। पर जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देश का प्रेम, देश के प्रति प्रेम दिखाने की बात आती है तो हम में से कई सारे जो है ये नहीं कर पाते। तो बात बस इतनी है कि बहुत ही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम करके देश के प्रति अपनी अपनी आस्था, अपने प्रेम को दिखा सकते हैं, अपनी वफादारी को दिखा सकते हैं। और देश ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम क्या कर सकते हैं ये हम दिखा सकते हैं। सबसे छोटी ये बात है कि हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की जो संपत्ति है, हमारी जो नैसर्गिक प्राकृतिक जो हमारे पास ये सारी संपदा है, इसे संभाल कर संजो कर रखना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे कि वन्य जीव हो गए, हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट है ये हो गए, वन हो गए, बाकी सारी चीज़ें जो हमारे देश ने हमारे लिए बनाई हैं, सड़कें हो गई, बाकी सारी जैसे कचरे की बात हो गई, सफाई की बात हो गई, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। भाई और क्या हो रहा है हमारे देश में और क्यों हमें गर्व है अपने देश पर, इसके बारे में जानने के लिए आपको बने रहना होगा क्योंकि 10 बजे के मुख्य समाचारों के बाद आप सुनेंगे नमस्ते भारत और हमारे देश की, देशवासियों के उपलब्धियों की बातें होंगी उस दौरान। तो बने रहे, सुनते रहे, मैं आपको छोड़े जा रही हूं कुछ गानों के साथ और लौटूंगी 10 बजे के मुख्य समाचारों के साथ। मैं हूं वैशाली और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 10:27 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। लोकसभा में आज लोक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। पेपर लीक से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICSC, फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% हिस्सा है। इस तरह वह चीन, रूस और इंडोनेशिया के आगे निकल गया है। ये उपलब्धि भारत के समुद्री क्षेत्र के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है। 2015 में विश्व

0: के समुद्री नाविकों में भारत का केवल 5.2% योगदान था। मुख्य समाचारों में आगे, गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 2046 गणपति विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मांडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित ट्रेनें हैं और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित ट्रेनें शामिल हैं। आरक्षित ट्रेनों के लिए बुकिंग 1 अगस्त से सभी काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। ट्रेनों की विस्तृत समय सारणी राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली NTIS वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है। मुख्य समाचारों के अंत में, ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। ये राष्ट्रमंडल खेलों में हरजिंदर का लगातार दूसरा पदक है। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ आकाशवाणी मुंबई के प्रादेशिक समाचार विभाग द्वारा ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगले कार्यक्रम नमस्ते भारत के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
0: आप सुन रहे हैं 107.1 MHz पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है नमस्ते भारत में। मैं हूं वैशाली और इस घंटे आप सभी के साथ बनी रहूंगी। दोस्तों, हमने कई सारी बातें की हमारे देश, हमारे शहर के बारे में अब पिछले घंटे में, और आप सभी से जो एक और बात साझा करना रह गया था वो है भजनों के बारे में। हाँ, हमारे ईश्वर के स्मरण के बारे में और इन मधुर भजनों के बारे में जब हम बात करते हैं तो मन की शांति, सकारात्मकता, ये सारे एहसास तो मन में होते ही है। और पता है आपको, आज संगीत की दुनिया के एक ऐसे ही दिग्गज कलाकार का जन्मदिन है जिनकी आवाज ने करोड़ों भारतीय घरों की सुबह को भक्तिमय बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बेहद लोकप्रिय और आदरणीय भजन गायक अनूप जलोटा जी की, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसी लागी लगन जैसे अनगिनत सदाबहार भजनों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संगीत और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया, एक नई पहचान दी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल के भजन हैं और ऐसे हैं ना जिनसे दिल खुश हो जाता है। उनकी मखमली आवाज और गायन की सहज शास्त्रीय शैली सीधे हमारे आत्मा को छू लेती है। संगीत भी इतना अद्भुत है कि भाई हर तरफ जो है बस ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण वातावरण है, बहुत ही अच्छे उम्दा एहसास है। दोस्तों, नमस्ते भारत में कई सारी बातें मैं आपको ले आने वाली हूँ आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले अनूप जलोटा जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको ये शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं और FM रेनबो की पूरी टीम की तरफ से है। दोस्तों, आज जहां हम कला और उद्योग जगत के सितारों की बात कर रहे हैं, वहीं पर बात आती है हमारे खेल जगत के अद्भुत सितारों के, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाऊंगी ऐसी लागी लगन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नए गानों के संग। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours।
3: आप सुन रहे हैं 107.1 FM Rainbow पर नमस्ते भारत। दोस्तों आज का ये नया सवेरा हमारे देश के लिए केवल एक नया दिन नहीं है बल्कि वैश्विक मंच पर हमारी अद्भुत सफलताओं का एक और शानदार जश्न है। आज के इस शो में हम बात करेंगे खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक भारत और भारतीयों के लहराते परचम के बारे में जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो तैयार हो जाइए इस सकारात्मक और गौरवशाली सफर के लिए क्योंकि आज हमारे पास खुश होने की कई बड़ी वजहें हैं। तो चलिए सुहानी सुबह को और ज्यादा सुहाना करते हैं और बेहतरीन गाने तो आपको सुनवा ही रही हूँ। साथ ही साथ देखिए हमारे जो देशवासी है हमारे जो एथलीट्स है इस समय पूरी दुनिया की नजरों के सामने है। जी हाँ सामने चल रहा है पूरे दुनिया के ग्लासगो में चल रहा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है फिलहाल जहाँ हमारे भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में बेहद धमाकेदार शुरुआत करते हुए शुरुआती दिनों में ही अपना खाता खोल लिया है। अभी भी कुछ देर पहले आपने समाचारों में और नई उपलब्धियों के बारे में जाना। हमारे शानदार 124 सदस्यीय दल ने प्रतियोगिता के शुरुआती दौर से ही विभिन्न खेलों में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है जो हमारे देश के मजबूत होते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को दर्शाता है। जमीनी स्तर पर खेलो इंडिया जैसी दूरदर्शी योजनाओं का ही ये सुखद परिणाम है कि आज हमारे एथलीट्स दुनिया के सामने बिल्कुल एक जबरदस्त बीस्ट मोड में नजर आ रहे हैं। हर एक मुकाबला हमारे खिलाड़ियों के कड़े परिश्रम अनुशासन और देश के लिए कुछ कर गुजरने के अटूट जज्बे की गवाही दे रहा है। तो आइए खेल के इस महाकुंभ में अपने पूरे भारतीय दल का हौसला बढ़ाएं और उनकी इस शानदार शुरुआत का मिलकर जश्न मनाएं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आप सभी को कौन सा गाना मैं सुनवाऊं क्योंकि एक से बढ़कर एक गाने हमारे पास है। तो भाई क्योंकि हम यही दिखाना चाहते हैं हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही दिल पर लेकर और दिमाग पर जोर डालकर हर तरह से अपने पुर्जे को एक्टिवेट करके हमारे खिलाड़ी अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस जश्न को मनाते हैं इस गाने के साथ। बने रहें सुनते रहें 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: नमस्ते भारत चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर और कई सारी बातें खेल जगत से आप सभी के लिए हम ले आए आज. क्योंकि देखिए सभी की नज़रें जो हैं इन राष्ट्रमंडल खेलों पर बनी हुई है और क्योंकि हमारे देश में खेलो इंडिया ये इसकी शुरुआत हुई और हमारे जो देश के यानी कहते ना कि बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू होकर फिर खेलो इंडियाज जो खेलो इंडिया गेम्स हैं यहाँ पर जो है हमारे खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी आगे और बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए और ज़्यादा पक्के और तैयार हो जाते हैं. तो दोस्तों इस समय पूरी दुनिया की नज़रें हैं ही ग्लासगो पर और जब बात भारोत्तोलन की यानी वेट लिफ्टिंग की आती है तो भारत की एक बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो जाता है. ग्लासगो से हमारे लिए सबसे बड़ी और गौरवान्वित करने वाली खबर आई थी कि स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया था. इस बेमिसाल जीत के साथ ही मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स के खिताबों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्वर्णिम हैट्रिक पूरी कर ली. उनके हर एक लिफ्ट ने न केवल वजन को उठाया बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और देश के सम्मान को एक नई ऊंचाई दी है. उनकी ये सफलता भारत की नारी शक्ति के साहस, दृढ़ संकल्प और कभी न हार मानने वाले जज्बे का सबसे खूबसूरत उदाहरण है. इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के लिए पूरे भारत की तरफ से हमारी इस चैंपियन बेटी को दिल से सलाम.

हम नमन और ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पदकों के आने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि हमारे अन्य वीरों ने भी देश का मान बढ़ाया है। भारत के होनहार वेटलिफ्टर ऋषिकांता सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इतना ही नहीं, ऋषिकांता ने स्नैच वर्ग में एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाकर अपनी इस जीत को और भी ज्यादा खास और ऐतिहासिक बना दिया। और बातें थोड़ी ही देर में, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM Rainbow। नमस्ते भारत में हम जश्न मना रहे हैं अपनी जीत की कॉमनवेल्थ गेम्स में। इस साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों द्वारा। और भाई बातें हो गई मीराबाई चानू की, और फिर मैंने आपको बताया ऋषिकांता सिंह के बारे में। और देखिए वही दूसरी ओर पुरुषों में जो है 65 किलोग्राम वर्ग में मुथु कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की सही से, मुथु पंडी राजा ने भी अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में एक और चांदी का तमगा डाल दिया है। हमारे विशेष रूप से सक्षम एथलीटों ने भी कमाल करते हुए जो है माध्यम से पैरा पावर लिफ्टिंग में देश को पहला कांस्य पदक दिखाया। ये थे झंड कुमार, और इन सभी जाबाज एथलीटों का ये प्रदर्शन साबित करता है कि जब इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज कल सुबह की हवाएं दोस्तों, ये जो है देश की जीत का एक अलग ही एहसास दिला रही है, और इस जीत की महक से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सभी फॉलो करते हैं सारे ही खेलों को, और अभी कुछ समय पहले ही फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ और देखिए राष्ट्रमंडल खेल शुरू हो गए। और इन खेलों के इतिहास में वो दिन भारत के पैरा एथलेटिक्स के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज हो गया जब हमने एक और जीत हासिल की। जब हमारी जाबाज पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए देश का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक देश को दिलाया।

राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली शर्मिला भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं। इसी स्पर्धा में भारत की एक और गौरव की बात शिल्पा के शायला ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया और पोडियम पर तिरंगे की शान बढ़ा दी। इन दोनों बेटियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सोशल मीडिया पर विशेष रूप से बधाई देकर पूरे देश की खुशी को साझा किया। वाकई इन अद्भुत खिलाड़ियों की दृढ़ता और अटूट लगन आज देश के हर एक युवा के लिए प्रेरणा का एक अखंड स्रोत बन चुकी है। इतना अच्छा लगता है जब हम अपने भारत के खिलाड़ियों के बारे में ऐसी बातें करते हैं और ऐसा जो जीत का माहौल है और ये खुशियां साझा करते हैं। चलिए अब खेल के मैदान से सीधे चलते हैं अंतरिक्ष के अनंत गलियारों में, लेकिन कुछ एक गाने के बाद। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, नमस्ते भारत चल रहा है। और बात हमारी देश के इन वीर बेटियों की जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए पदक हासिल किए हैं। और वाकई देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं, जब हमारे देश में सारे ही लोग, यानी स्त्री हो पुरुष हो, जब बराबरी से कंधा मिलाकर आगे जब बढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मन जो है नाच उठता है, झूम उठता है। और जब नए नए विक्रम हासिल करते हैं तो वाकई बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष की बात मैंने बस छेड़ी ही थी, तो वो बात ऐसी है कि हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि भारत ने एक और बहुत बड़ी छलांग लगाई है। हाल ही में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने एक ऐसा

कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने हमें अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों के विशिष्ट क्लब में ला खड़ा किया है। हैदराबाद की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हम सभी ने इसके विजुअल्स देखे हैं और अपने मिशन आगमन के तहत इस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरकर सभी उपग्रहों को उनकी सही कक्षा में स्थापित कर दिया। इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुद इस टीम को इनसे मुलाकात की, इनको बधाई दी और इस शानदार कामयाबी के लिए पूरी टीम की सराहना की। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये बस आगाज है और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये दरवाजे खोल रहा है इस जैसे स्पेस मिशंस के लिए। दोस्तों, विक्रम 1 रॉकेट की ये ऐतिहासिक सफलता केवल अंतरिक्ष में जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस रॉकेट में अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन और बेहद हल्के कार्बन कॉम्पोजिट एयरफ्रेम जैसी शुद्ध भारतीय इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी बड़ी कामयाबी के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक घोषणा की गई, जो हमारे देश को डिजिटल युग में आगे ले जाएगी। ऐसा बताया गया है कि भारत अब बहुत जल्द अपने अंतरिक्ष रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल्स में पूरी तरह से मेड इन इंडिया यानी मेड इन भारत सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करना शुरू कर देगा। ये ऐतिहासिक कदम हमारे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को हकीकत में बदलते हुए वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में हमारे देश की स्थिति को बेहद मजबूत करने वाला है। तो देखिए, इतनी सारी अच्छी खबरें हैं और भी खुशखबरियों का इंतजार हम सभी को रहेगा। और वाकई वो मंजर भी क्या मंजर होगा जब हमारा देश, हमारे देशवासी एक से बढ़कर एक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, है ना। मैं हूं वैशाली और अभी कुछ समय आप सभी के साथ बनी रहूंगी, लेकिन बहुत जल्द शिल्पा होंगी स्टूडियो में लेकर के अपना प्लेलिस्ट। तो हालांकि मैं यहां पर बनी हुई हूं, मैं आपसे ले रही हूं इजाजत। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगस्त के महीने में उसी जोश के साथ, देश प्रेम के साथ और देश के लिए कुछ करने की प्रतिबद्धता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं वैशाली, आप सभी बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह ठीक 11 बजे का वक्त हो गया है। इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के कल गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए किसी भी डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक ना किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। समाचारों में आगे, मौजूदा वर्ष में जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन में 23 महीनों में सर्वाधिक 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। कल जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1% और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई। समाचारों के अंत में, चीन के हांगझोउ में ISSF निशानीबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में यह पदक हासिल किया। वहीं ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं के 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। समाचारों का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

खान साहब की आवाज़ दूर आपका लिखा हुआ एक गाना है पत्थर के फूल। इस दिन से 11:09 का वक्त हो गया है और ब्रेक फ्री के साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं शिल्पा, और इस घंटे हम एक म्यूजिकल गेम खेलने वाले हैं। पिछले हफ्ते से शुरुआत हुई है, दो धुनों को मिलाया जाता है और आपको जो है वो सुनाया जाता है और आपको गेस करना होता है कि वो दो गाने जो हैं वो कौन से हैं। और चलिए, पिछले हफ्ते जो है वो थोड़ी सी कठिनाई हुई थी सबको गाने पहचानने के लिए, तो इस बार मैंने थोड़ा आसान कर दिया है खेल। तो 90s के गाने हमने लिए हैं, और एक चीज़ है कि दोनों के दोनों, मतलब जितने गानों की धुनें आप सुनेंगे वो सारे के सारे सुपर हिट सॉन्ग्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गौर से सुनेंगे तो डेफिनेटली जो है वो पहचान में जो है वो धुन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली धुन जिसमें दो गाने हैं, दो गानों की धुनें हैं, ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि कौन कौन से गाने हैं।

बताइए कौन से दो गाने जो है वो इस धुन में मिले हुए हैं। 8-6-5-7-6-1-0-7 एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से मैसेज करो और कुछ भी कहना हो तो भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ माही गाना जो है वो आ चुका है डंकी फिल्म से।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
3: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग
4: मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी
3: जो छू लेते हैं आपका मन
4: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा
3: हर आरजी का है एक अलग ही रंग
4: ओ रंग रे
3: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से जो पहुँचती है आपके दिल तक only on FM Rainbow. म्यूजिकली योर्स 11:21 का वक्त हो गया है और ब्रेक फ्री चल रहा है यहाँ पर हम एक दिमाग की जो है वो कसरत खेल रहे हैं दो धुनों को जो है वो मिलाकर आपको सुनाया गया और बहुत सारे लोगों ने जो है वो पहचान लिया है बहुत लंबी लिस्ट है यार इनफैक्ट तो गजानन शिंदे ने मैसेज किया है पंकज मोहोड़ जी ने अमिता जाधव जी ने प्रणव शिंदे ने अमित जाधव ने अजय साखरे ने मुकेश जी ने रघुनाथ जी ने बहुत सारे अमित यार एक और अमित का जो है वो मैसेज आया है रुको मैं उनका सरनेम जो है वो मिस कर रही हूँ ओके तो अमित भगत यस संजय दर्शन जी ने जो है वो पहचान लिया है अंजू जी ने अंधेरी से जो है वो मैसेज किया है प्राशिक बोरकर का राइट आंसर आया है और आई होप मैं किसी का नाम जो है वो मिस नहीं कर रही हूँ चलिए तो अभी जो दो गाने थे उनमें से एक गाना जो है वो तो ये वाला है दूसरा गाना जो है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगी लेकिन उससे पहले जो है अगली धुन जो है वो सुना दी जाए कि भैया दो कौन से गाने जो है वो आपको मिलाकर सुनाए जा रहे हैं यहाँ पर तो इन दोनों को जो है वो सुनिए और पहचानिए कि कौन कौन से गाने जो है वो हैं

कौन से दो गाने हैं, आई गेस अब जो है वो 90s का म्यूजिक आ गया है, तो इसके लिए आपको काफी आसानी जो है वो हो गई है. 8 5 6 6 1 0 7 1 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. और जिन दो गानों की धुनें मिक्स की गई थी उनमें से एक गाना तो मैंने बता दिया, वो हम डेफिनेटली थोड़ी देर में प्ले करेंगे. और अगला नहीं, इनफैक्ट एक और दो दूसरा सॉन्ग था वो ये वाला था, लता जी और उदित जी की आवाज़ में. सुनिए और लौट कराइए यहीं म्यूजिकली पर.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
0: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

0: रंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: यस, म्यूजिकली योर्स 107.1 FM रेनबो पर 11:37 का वक्त हो गया है, ब्रेक फ्री चल रहा है। शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जिन्होंने मैसेजेस करे हैं। और ये गेम फाइनली समझ आ गया है और धुने जो है वो बहुत सारे लोगों ने पहचान ली है। राकेश माथुर जी, मुकेश जी, मुकेश वालिया, एक इन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं लिखा है, दिलेश जी भंडारा से, ओके, रघुनाथ जी, अमित भगत, विजेंद्र घाटोल जी ने तो मतलब बहुत एक अरसे के बाद

कोशिश की और फाइनली जो है वो गेस कर लिया। इसके अलावा राजेंद्र परमार जी, गजानन शिंदे जी, प्राशिक बोरकर, प्रणव शिंदे, पंकज मोहोर, सुषेण निहारकर जी, अमित जादव जी और दत्ता केदार जी, इन्होंने इन्होंने भी जो है वो पहचान लिया है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का, और आई होप मैंने किसी का नाम जो है वो मिस नहीं किया है। तो यहाँ पे खेल चल रहा है, म्यूजिकल गेम जिसे आप कह सकते हैं, दो दिनों को मिलाया जा रहा है आपकी कन्वीनियंट के लिए। 90s के गाने रखे गए हैं, सारे हिट सॉन्ग्स हैं, और अब फाइनली मुझे मैसेज आ रहा है कि भैया थोड़ा इसको कठिन किया जाए, पिछले हफ्ते यही हो रहा था कि इसको सरल किया जाए। तो मैंने सोचा कि सरल जो है वो कैसे होगा, लेकिन अब जो है वो कठिन थोड़ा सा आने वाला है। तो दो धुनें यहाँ पर आप लोगों के लिए प्ले हो रही हैं, पहचानिए कि ये कौन से दो गाने हैं।

बताइए कौन से दो गाने हैं 8-6-5-6-6-1-0-7 एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और फिलहाल के लिए जो दो धुनें मिलाई गई थी उसमें से एक गाना डेफिनेटली ये था और एक इसके उस पार जो है वो प्ले होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगी आपको। फिलहाल बने रहिए म्यूजिकल योर्स पर, और अगर कुछ कहना हो तो नंबर मैंने आपको बता दिया है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
4: कभी खट्टी मीठी तकरार,
5: जब तुम चाहो पास आ दे हो.
6: कभी बे इंतहा प्यार,
7: कभी चुलबुली सी शरारत,
6: तो कभी मासूमियत बेशुमार.
4: ये है अनोखे रंगों वाला
6: FM रेनबो 107.1 MHz पर,
4: दिल से
6: दिल तक
5: मन वाला गे.
8: Yes, दिल से दिल तक म्यूजिकली योर्स. ब्रेक फ्री चल रहा है, 11:50 का वक्त हो गया है. शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं. धड़ाधड़ लोगों के मैसेजेस सबके आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा आसान जो है वो खेल कर दिया गया है. और रघुनाथ जी जिन्होंने कोल्हापुर से मैसेज किया है, दिलेश जी भंडारा से मैसेज किया है इन्होंने. एक इन्होंने आपका, मैंने आपको नाम पूछा है लेकिन बताया नहीं है, तो कोई बात नहीं. और इनका फ़ोन नंबर जो है वो भी जो है ओके. नाम इनका एक्चुअली में कहीं नहीं दिख रहा है. नहीं, विशाल बापट जी जिन्होंने पुणे से जो है वो मैसेज किया है. पंकज मोहोड़ जी सही जवाब. प्रकाश प्रणव शिंदे सही जवाब. धनंजय जी, राकेश माथुर. इसके अलावा विजेंद्र घाटोल जी ने तो गजब कर दिया, मतलब कभी इन्होंने कोई खेल नहीं खेला, लेकिन ये जो है वो फुल एनर्जी के साथ खेल रहे हैं. इसके अलावा 306 आपने भी अपना नाम जो है वो नहीं बताया है, अमित भगत. इसके अलावा 056 आपने भी अपना नाम नहीं बताया लेकिन राइट आंसर जो है वो दिया है. अजय साखरे जी और संजय दर्शन जी का पिछले गाने के लिए जो है वो नाम लेना रह गया था, तो इन्होंने भी लास्ट टाइम वाला जो क्लिप मैंने प्ले किया था वो भी इन्होंने पहचान लिया था. और इसके अलावा जो है आई होप मैंने सबके नाम जो है वो ले दिए हैं. और अगर किसी का रह गया होगा तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, एक रिमाइंडर जो है वो दे सकते हैं. और दो गाने जो है वो कौन कौन से थे, उसमें से एक गाना तो जो है वो आ रहा है, बड़ा सुंदर सा है, सोनू निगम साहब और जसविंदर जी की आवाज़ में है. इसका म्यूज़िक यहाँ से नहीं आता इतना समझ में, ऑब्वियसली जब मिक्स होता है तो यहाँ से नहीं आएगा बिकॉज डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन इसके बाद जो बीट्स शुरू होती हैं वो ऐसा फट से आपको रजिस्टर जो है वो हो जाता है. ये देखो यहाँ से अभी और जो है आएगा तो आप पहचान जाएंगे. तो ये एक गाना था, दूसरा वाला इसके उस पार जो है वो प्ले करती हूँ. आपको कहीं नहीं जाना है, 12 बजे न्यूज़ पढ़ी जाएगी और उसके बाद एक और गेम खेला जाएगा यहीं FM रेनबो म्यूजिकली योर्स पर.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे का वक्त हो गया है। इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, साक्ष्य नष्ट करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ओडिशा में लगातार हो रही मानसून की वर्षा के कारण बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां भंडारी पोखरी और धामनगर ब्लॉक के बड़े भूभाग बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों की बस्तियों और खेतों में घुस गया है। समाचारों के अंत में, बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना नवंबर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीवों प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

Aslani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में गाना सुना। 12:09 का वक्त हो गया है और यहाँ पर एक और गेम आप लोगों के लिए आने वाला है। म्यूजिक कैफे की शुरुआत वैसे हो चुकी है इस गाने के साथ और इस गेम के बारे में आपको पता ही है। एक गाना होता है, उसको थोड़ा कठिन करके, क्लिष्ट करके आपको बताया जाता है और आपको गाना पहचानना होता है। ठीक है, तो पहला सॉन्ग आ रहा है कि तेरे मस्तक पर झूमर शोभित, तेरे कर्णों की कुंडली का दीप्तिमती, हे प्रिय तेरे करों के कंकर झंकारित, तेरे चरणों की नुपुरी का निनादित, हे प्रिय। कौन सा गाना है ये, पहचान गए हैं तो 8657661071। अगर मैं और इसको ऐसे मतलब गुनगुनाऊं तो शायद ये पूरी रिदम जो है वो आ जाएगी। बड़ा हिट गाना है, बहुत फेमस सॉन्ग है। तेरे मस्तक पर झूमर शोभित, तेरे कर्णों की कुंडली का दीप्तिमती, हे प्रिय तेरे करों के कंकर झंकारित, तेरे चरणों की नुपुरी का निनादित, हे प्रिय। कौन सा गाना है बताएं। फिलहाल अलका जी और कुमार शानू साहब की आवाज़ में ये गाना सुने और फिर लौट कर आए म्यूजिकली।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर, आकाशवाणी एफएम रेनबो।
5: म्यूजिकली और 107.1 एफएम रेनबो पर 12:16 का वक्त हो गया है। म्यूजिक कैफे चल रहा है, शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं और बहुत लोगों ने कोशिश करी लेकिन राइट आंसर जो है वो नहीं आ रहा है। एक बार जो है वो और मैं आपको बोलकर सुनाती हूँ। तो ये एक गाने को क्लिष्ट किया गया है, कठिन किया गया है और आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है। ठीक है, तो तेरे मस्तक पर झूमर शोभित, तेरे कर्णों की कुंडली का दीप्तिमती, हे प्रिय तेरे करों के कंकड़ झंकारित, तेरे चरणों की नुपुरी का निनादित, हे प्रिय। कौन सा गाना है? 8 6 5 6 6 1 0 7 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करें।

आस्था गिल, सचिन जिगर, दिव्य सारे मिलकर गा रहे थे इस गाने को. 20 मिनट का वक्त हो गया है. म्यूजिक कैफे पर बने हुए हैं और एक नहीं दो ही आंसर जो है वो आए हैं. एक आया है राकेश माथुर जी का और एक आया है नितिन जी का. और गाना जो है वो मैं आपको थोड़ी सी धुन जो है वो सुना देती हूँ कि कौन सा जो है वो था जो पहचान नहीं पाए. अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान वाला क्लू या आसान वाला गाना जो है वो लाती हूँ. मैं पहले ही गाना सुनाऊंगी आपको, लेकिन अभी अगला गाना जिसको क्लिष्ट किया गया क्योंकि हमारे पास समय कम है 12:30 के पहले, आपको पहचानना है और 8656661071 पर मैसेज करना है. तो हृदय पर आघात लगा प्रेम जागने लगा, हृदय पर आघात लगा प्रेम जागने लगा, वह अपरिचित मेरे हृदय को बड़ा ही मनोहर और प्रिय लगा. ये जेन्युइनली आसान है. कौन सा गाना है, पहचान गए हैं तो मैसेज जो है वो कर दीजिए. और फिलहाल के लिए अगला गाना प्ले कर दिया है साधना सरगम जी, सुजाता भट्टाचार्य जी, उदित नारायण जी, सब मिलकर गा रहे हैं इस गाने को. सुने और लौट कर आए म्यूजिकल योर्स पर.

71 FM रेनबो पर सोनू निगम सर भी थे, शंकर महादेवन भी थे इस गाने में, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ और शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन पर सुना आप लोगों ने। 12:27 का वक्त हो गया है। म्यूजिक कैफे पर शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं और गाना जो है वो ये वाला था, आसान था। मुझे लगा दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही जोर जो है वो हो रहा है सब लोगों को, तो एक जो है वो सरल गाना जो है वो दे दिया जाए, लेकिन इसको हम सुनाएंगे 1 बजे के उस पार। और राइट आंसर जो है वो किन किन लोगों ने दिया है, राकेश माथुर जी आज ये विनर जो है वो रहे, क्योंकि उन्होंने एक भी ऐसा सवाल नहीं रहा जिसका जवाब जो है ये नहीं पहचान पाए। पंकज मोहोर जी ने सही जवाब जो है वो दिया है, प्राशिक बोरकर जी, प्रणव शिंदे जी, अमित भगत जी ने जो है वो मैसेज किया है कि भैया अब जो है वो मेरे एकदम पहचान नहीं पा रहा हूँ, दिमाग की कसरत जो है वो पूरी हो चुकी है। तो चलिए कोई बात नहीं, और अब यहाँ पर एक और छोटा सा गाना आप लोगों के लिए आएगा, और उसके बाद क्या आने वाला है मैं आप लोगों को बताती हूँ।

107.1 FM रेनबो पर 12:30 का वक्त हो गया है और अब समय है हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम NCERT उमंग का, जो लगभग 1 बजे तक चलेगा। तो 1 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल उमंग

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी, श्रोता, हुए मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम

0: हम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
0: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-5559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करेंगे।

और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ?
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ हाँ ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। अरे बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे।

उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए। यहाँ?
2: हाँ, आइए। इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों पर विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: वाओ, शुक्रिया।

0: 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Musically Yours 107.1 FM Rainbow पर 1:05 का वक्त हो गया है और अब शुरुआत होगी हिट एंड हॉट की. ये वो घंटा होता है जहां पर आपकी रिक्वेस्ट ली जाती है. ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेज दिए हैं और आज संजय दत्त साहब का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो पहले बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं. और पहला गाना जो है वो आ रहा है बिना देरी के यश शिंदे जी की रिक्वेस्ट पर, खूबसूरत फिल्म का. और आई थिंक बहुत जिन लोगों के मैसेजेस आए ये गाना और भी लोगों ने जो है वो मांगा होगा, तो देखते हैं किन किन लोगों की फरमाइश आई है. फिलहाल यश शिंदे आपके लिए ये सॉन्ग.

नीति मोहन की आवाज़ में गाना पद्मावतन से 1:14 का वक्त हिडन हार्ट शिल्पा के संग बने हुए हैं आप और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही है, देखते हैं किन किन के गाने जो है वो हम प्ले कर पाते हैं। फिलहाल ये गाना जो आपने सुना प्राची कपूर कर जी की रिक्वेस्ट पर हुआ था प्ले, और समय थोड़ा सा कम है तो मुझे ऐसा लगता है जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दी है उतने गाने आई थिंक हम उसमें से पिक कर लेते हैं। अब अगर कुछ कहना है तो 8657661 है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज जो है वो कर सकते हैं। और अभी के लिए एक गाना ऑलरेडी प्ले हो चुका है जिसका म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा है, और मुकेश वालिया जी को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है तो उन्हें ये गाना सुनना था।

जी और उदित जी की आवाज़ में गाना आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ दुश्मन फिल्म से रिक्वेस्ट किया था विजेंद्र घाटोल और पंकज मोहर जी ने। 1:27 का वक्त हो गया है और हिट एंड हॉट पर बने हुए हैं आप सभी। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत लोगों ने फरमाइश तो भेज दी है किन किन की पूरी हो रही है, वो थोड़ी देर में जो है वो पता चल ही जाएगा। लेकिन कुछ कहना हो तो 8657-6-1071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, बिंदास जो है वो लिख कर भेज सकते हैं। शो कैसा लग रहा है वो भी जो है वो बता सकते हैं। और अब 1:30 पर यानी 1:30 आपको जो है वो राष्ट्रीय मराठी समाचार जो है वो सुनने को मिलेंगे और जो चलेंगे लगभग 1:40 तक। और 1:40 पर फिर से हमारी मुलाकात जो है वो हो जाएगी यहीं म्यूजिकली हाउस पर।

0: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग।
1: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
0: जो छू लेते हैं आपका मन।
1: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए,
0: हर आरजे का है एक अलग ही रंग।
1: ओ रंग रे,
2: आकाशवाणी मुंबई।

0: म्यूजिकली और 107.1 FM रेनबो पर 1:40 का वक्त हो गया है। राशि मराठी समाचार अभी आप सुन रहे थे और हिडन हॉट की गाड़ी फिर से यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है। वैसे पिछला गाना जो दुश्मन फिल्म का प्ले किया था हमने चेतन कुमार जी की फरमाइश पर हुआ था और अब आ रही है लाल गिरी गोस्वामी जी की रिक्वेस्ट।
1: अरे है।

FM रेनबो पर 1:50 का वक्त बस होने वाला है, कुछ सेकंड जो है वो बचे हैं और हिट एंड हॉट पर बने हुए हैं आप सभी. बहुत बहुत धन्यवाद. इतने सारे लोगों के मैसेजेस जो है वो आए हैं यहाँ पर और सबके नाम जो है वो अब मैं बताने वाली हूँ. सुशैन जी, पंकज मोहर जी, विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, मुकेश वालिया, स्वाति पांडे, प्रणव शिंदे, मुकेश कश्यप, चेतन कुमार, अभिजीत जी, दत्ता केदार पंडरपुर से, लालगिरी गोस्वामी, राकेश माथुर, फिरोज सिगनपुरिया, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अजय साखरे जी, आदर्श जी, प्राशिक बोरकर, शुभ लक्ष्मी, गुरमीत सिंह, मीता सिंह. इसके अलावा इन्होंने अपना नाम जो है वो लिखा है क्या, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ओके, जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन, रोजी, पर्ल और विलिस, हीरामणि वर्मा, स्वर्णा सिंह, संजय दर्शन, टी डी मल्होत्रा. इसके अलावा एक और इन्होंने भी अपना नाम ओके भेजा है, आर्यन राज, रोहित

राज, पीयूष कुमार, नितिन जी, संदीप कुमार, दिव्यांशु यादव, अमित भगत, महेंद्र जी, किरण जी, गजानन शिंदे, प्रमोद जी, मनीषा वारंग, राजेंद्र परमार, राम प्रजापति, सुरेश जी और अंजू जी, अंधेरी से धनंजय जी, श्रेया राउत, दिलेश जी, रघुनाथ जी, अमिता जाधव, थैंक यू सो मच, और सुरेश जी, काशीनाथ पाटिल, आई होप मैं किसी का नाम जो है वो मिस नहीं कर रही हूँ, और बाबा दादर से इन्होंने भी जो है वो मैसेज जो है वो किया है। ओके, शुक्रिया आप सभी का, और जिस तरह से आप लोगों का साथ बना रहता है, हम लोगों की भी एनर्जी जो है वो बनी रहती है। और अब यहाँ पर आई थिंक दो गाने आप लोगों के लिए आएंगे, और उसके बाद जो है वो 2 बजे मराठी का शो जो है वो शुरू हो जाएगा, और आप मराठी म्यूज़िक जो है वो एंजॉय कर सकते हैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। मेरी आपकी मुलाकात जो है वो बहुत जल्द होगी यहीं एफएम रेनबो पर। टिल देन जो करना है करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी बातें, अच्छी रील्स जो है वो कंज्यूम करें, और उन्हीं को जो है वो फॉरवर्ड करें। और फिलहाल छोड़े जा रही हूँ ये गाना अलका जी और कुमार सानू साहब की आवाज़ में, साजन फिल्म का। सुने और बने रहें म्यूज़िकली योर्स।

0: Conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species, but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100
1: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई.
0: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says center to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा. सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है. गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी. भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए. पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई. और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में

0: बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद N.K. प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की CBI जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि

0: मंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
1: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
1: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां के हैं,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना के हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनःनिर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
8: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सब

0: भी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में है। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

कैसे हो आप सभी लोग? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मजे में हो, क्योंकि भाई कमली बनने का समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आप सबकी सखी आरजे रिद्धि। और जब ऐसे गाने हम सुनते हैं ना, वो भी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, तो सच में मन करता है कि जो गाने के बोल है ना, हम भी बस कमली हो जाए और कहते हैं दुनिया जहां कि जितने भी काम हमें करने हैं वो कर ले। खैर, अब वो जो सारे काम है वो तो करेंगे, बट पहले एक काम करेंगे कि हम अपनी बातें करेंगे, हमारी बातें सुनेंगे। बातें करना, बातें सुनना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आजकल कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता भाई। कॉन्सेंट्रेशन स्पैन ही इतना कम हो गया है, लेकिन उस स्पैन को बढ़ाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। आप सभी का स्वागत है लव यू जिंदगी प्रोग्राम में, जहाँ आज हम वो बातें करेंगे कि भाई सच में कभी कभी हमारा ध्यान कुछ बातों पर जाता ही नहीं है, और जब उन बातों पर ध्यान जाता है तब हमें ध्यान आता है कि यार जिंदगी में सिर्फ हम इंसानों का ही अहम रोल नहीं है, इंसान के अलावा और भी बहुत से ऐसे जीव प्राणी हैं जिनका बहुत बड़ा रोल प्ले है इस दुनिया पर। तो जब मैं जुहू की तरफ घूमने गई तो मुझे मेरी सहेली मिली, बहुत समय बाद वो मिली मुझे। तो मैंने कहा चलो यार, बहुत दिन हो गए हैं, तो जुहू की फेमस जगह जो है खाने पीने की, वहाँ पर जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो

बड़ी एक्साइटेड थी आज के लिए, तो मैंने कहा यार आज तो तू बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? तो उसने कहा हाँ, मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो में जो एक बाघ है, एक टाइगर है, टाइगरस कह सकते हैं हम, कि वो मस्त अपने बच्चों को लेकर तालाब के किनारे पानी पी रही थी। जब उसका पानी पीकर हो गया तो उसने धीरे धीरे, उसके तीन बच्चे थे, उसको पानी पिलाया, और वो देखकर मतलब कहते हैं ना, दिल में हमारी इतनी खुशियाँ जागी, इतना क्यूट नज़ारा था, इतना प्यारा लगा, और मैंने उसको लाइक किया और आगे बढ़ी। तो मैंने कहा हाँ यार, ये जो जानवर होते हैं, ये जो स्पेशली जो ये टाइगर्स के कब्स जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिल्लू कहते हैं हम, कोई क्या, तो उन्हें देख कर ना, भले हमारे दिमाग में कोई भी बात चल रही हो, बस एक बार वो दिख जाए तो मानो यार वाह, कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट है, अपने आप हाँ, हमारे जो हाथ हैं उनको लाइक करने पर चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार आरुही, तूने बात तो सही कही। तो आरुही जो है एक एनिमल लवर है, एक मतलब वो व्यक्ति है जैसे आप 24 घंटे जानवरों की बात कहे तो वो खुशी खुशी कहेगी और साथ में बहुत सारी कहानियां भी सुनाएगी। तो उसी के साथ मैं खुद भी, मैंने जानवरों के लिए ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हाँ एज अ पर्सन मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगते हैं उनके वीडियोज़ देखना, उनको दूर से निहारना, वो जो भी अपने काम करते हैं वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो बस फिर आरुही मुझे और भी अपनी बातें बता रही थी, लेकिन आपको बने रहना है क्योंकि मुझे भी जानना है कि भाई आपको जो बाघ है, जो टाइगर है, जो टाइग्रेस होती है, जो अपने पिल्लू को लेकर, अपने बच्चों को लेकर घूमती फिरती है, उस वीडियो पर आप रुकते हो कि नहीं, उनके बारे में आप जानते हो कि नहीं, लेकिन साथ ही हम एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा क्रेजी हो जाएंगे क्या?

क्रेजी किया कि नहीं किया, क्या बात है। मतलब मैं तो अगर क्रेजीनेस को जानवरों के साथ जोड़ू ना तो सच में भाई हम तो क्रेजी है। आपने देखा होगा कई बार जैसे हमारी जिंदगी चल रही है भीड़ भाग में, हम दौड़ रहे हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं, काम करते हैं, इस सारे भीड़ में कभी ना कभी आपने किसी एक व्यक्ति को ऐसा देखा होगा जो रुक कर, थोड़ा ठहर कर किसी डॉग भैया को, मैं तो भैया इसलिए कहती हूँ कि रक्षा तो करते ही है वो हमारी, तो जो हमारे कुत्ते होते हैं, हमारी जो बिल्लियाँ होती हैं, गाय होती है, या अब बाघ तक तो हम दूर से ही उनको नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना वो उनके लिए सोचते हैं, उन्हें निहारते हैं, देखते हैं, कोई खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, तो कोई यदि उनको कोई कुछ कह दे तो वो उनको कह देता है कि भाई तुम ऐसे जानवरों को मत कुछ कहो। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, सभी को तो अपनी एक दौड़ में दौड़ना है बस। तो उसी के साथ जब मैं आरुही के साथ बात कर रही थी तो उसने कहा कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, एक बाघिन अपने 3 बच्चों को नदी पार करवा रही थी। जब वो नदी पार करवा रही थी तो क्योंकि वो बाघिन है साथ ही साथ एक माँ है, तो आपको भी पता होगा जब हम किसी बाजार में घूमने फिरने जाते हैं तो अपनी जो माएँ होती है वो कैसे अपना हाथ पकड़ कर रखती है, और यदि बच्चे 2-3 हो तब तो फिर माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस समय जब वो नदी पार करवा रही थी तो नदी पार करना इज़ अ टास्क, जैसे हमारे लिए रोड क्रॉस करना है, हम देखते हैं दोनों तरफ के गाड़ियाँ आ तो नहीं रही है, तो उसी तरह से अब वो भी अपने बच्चों को नदी पार करवा रही थी। तो धीरे धीरे उनकी देखिए जुबान नहीं होती, लेकिन अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी अपने तरीके से बच्चों को बता रही होती है कि तुम्हें कैसे इस पतली सी नाड़ी पर पैर देकर कैसे पार करना है, क्योंकि छोटे हैं अभी, वो गिर गए पानी में तो तैर नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से जब वो ये देख रही थी, ये जो डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तब उसका दिल भर आया कि यार रिद्धि कितना शानदार लगता है ना ऐसे नज़ारे देखना, और हाँ मुझे ऐसी बातें करनी या सुननी पसंद है। तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ भरी कि भाई हाँ मुझे भी बड़ा पसंद है, और मैंने कहा कि यार तू तो सच में एक एनिमल लवर है, और उसके मुकाबले मैं तो क्या करती हूँ, मतलब हाँ कुछ छोटे मोटे रील्स देख लिए, क्यूट कमेंट कर लिया और निकल जाती हूँ, बट सच में जंगल में जाकर ऐसे अनुभव देखना, आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, और साथ ही साथ उनको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के तौर पर, एक लाइफ टाइम मेमोरी के तौर पर अपने दिल में बांध कर रखना अपने आप में एक रोमांचक बात है। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि लव यू जिंदगी के कार्यक्रम में आपकी जे रिद्धि क्यों आज टाइगर बाघ के बारे में बात कर रही है, और कुछ तो हमारे लिसनर्स ने भेज भी दिया है, तो और बातें करेंगे बस इसी चर्चा पे, और क्रेजी होंगे और थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

क्या बात है, मतलब हम तो यार शेर बाघ जानवरों की बात करते करते भारत के अनेक राज्यों में सफर करने लगे, क्या बात है। तो गानों का तो मजा ही ऐसा है। और मैं बता दूं, आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी कार्यक्रम आपकी आरजे रिद्धि के साथ, जहां हम सब मिलकर इंटरनेशनल टाइगर डे, इस सबसे जरूरी दिवस पर हम बात कर रहे हैं बाघ और बात कर रहे हैं उनकी छोटी छोटी कहानियां और उनके साथ जो हम अनुभव शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब मैंने आरुही से कहा कि यार आरुही तुझे इतना शौक है, तू जाकर देखती है कई बार, वो घूम फिरती है, मैंने कहा यार मुझे तो बड़ा डर लगता है, क्या तुझे डर नहीं लगता? मतलब वो भाई बाघ है, मतलब दूर से देखो तो बड़ा प्यारा लगता है, पास चले जाओ तो उनके एक दहाड़ से हम डर जाए। तो आरुही कहते हैं कि डर तो उसे भी पहले लगता था, पर जब उसने भारत के कई ऐसे सेंचुरीज में जब उसने अपना एक सफ़र शुरू किया, कहते हैं ना एक आइटनरी होती है हमारी, तो उसने कहा कि जब वो रणथंभौर और कान्हा जाकर बाघों को नेचुरल हैबिटेट में देखना जब उसने देखा है,

तो डर इज्जत में बदल गई। अब ये बड़ी अच्छी बात कही उसने, कहा कि डर इज्जत में बदल गई। मैंने कहा भाई कैसे? तो वो कहते हैं वो जंगल में रहते हैं रिद्धि, जंगल उनका घर है और हम मेहमान हैं, तो मेहमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आप दूर रहिए, उन्हें अपने जीवन शैली में जिस तरह से वो जी रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। अब सही सी बात है भाई, अगर हम अपना ही उदाहरण ले, जब हम अपना काम करके थककर सोते हैं और अगर उस नींद में कोई खनन पैदा करे, है ना, एक छोटा सा आवाज़ ही क्यों ना हो जाए, तो हम चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो उसी तरह वो कहती है कि अगर हम इज्जत से पेश आए, मेहमान बनकर उन्हें दूर से निहारे, तो हाँ हमें बड़ा आनंद आएगा उनको देखने में, उनके खेल खेलने में। मतलब जिस तरह से वो अपना खेल खेलते हैं, ऐसे आजकल तो काफ़ी रील्स वायरल होती है ऐसे एनिमल्स की, जानवरों की। तो मैंने कहा ये बात तूने बड़ी अच्छी कही कि उनका घर है वो जंगल और हम हैं मेहमान, तो यदि तुम मेहमान बनकर ऐसी जगहों पर घूमोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी जगहों को अपना जगह मत मानो। क्योंकि अगर कहते हैं ना, अगर तुम्हारे घर भी कोई आएगा तो मेहमान बन के आओ तो ठीक है, अभी उनके ही घर को हम अपना बना लें तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो सही कहा, अब मैं भी ऐसे सेंचुरीज में जाऊँगी और दूर से ही देख कर आनंद लूटूंगी।

दिल्ली, पटना, एमपी सब जगह से जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि अरे वाह, मतलब क्या तरीका है ना लोगों तक पहुंचने का, बातों से और गानों से। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल टाइगर डे पे, और मैं बात कर रही थी आरोही से। तो मैंने आरोही से कहा कि यार मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है घूमना फिरना, फ़ोटोज़ निकालना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो जो होता है एक बड़ी खास जगह है उनकी हम सबके जीवन में, क्योंकि वो उन कह सकते हैं उन लम्हों को, उन पोस्चर्स को कैद करते हैं जो हम हमारे घर पर बैठे बैठे हमें पता ही नहीं होता है कि दुनिया के इस खूबसूरत जंगल में शेर, बाघ, घोड़ा, हाथी, न जाने ऐसे कितने प्राणी हैं जो कितने अच्छे मोमेंट्स बना रहे हैं, और वो उन फोटोग्राफर की वजह से हमारे पास पहुंचते हैं। तो आरोही बता रही थी कि उसका एक दोस्त है जो बांधवगढ़ में एक बाघ की झपकी लेने का शॉट लेने के लिए गया। तो आपको क्या लगता है, ऐसे इजीली शॉट मिल गया होगा कि यार हाय बाघ हमारी तरफ पोज मारो, मैं आपका फोटो खींचना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। उसने कहा कि उसने वहां पर 4 घंटे तक एक ही जगह बैठकर धैर्य से इंतज़ार किया उस मोमेंट का। उस मोमेंट को कैप्चर करना अपने आप में एक बहुत ही धैर्यशील और मजबूत काम है भाई, इतनी आसानी से ये काम नहीं होता, क्योंकि आपको शांत रहना है, आपको चुप रहना है। तो वो कहते हैं कि जंगल इतनी आसानी से फोटो नहीं देता, वो भरोसा जीतने पर देता है। क्या खूब कहा है ना, मतलब यार सच कहा है, तुम जाओगे और फोटो निकालोगे ऐसा नहीं होता है पहली बात तो, और दूसरे जो हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं उनमें इतना धैर्य होता है, उन्हें उतनी जानकारी होती है, हम बिना ज्ञान के उनके पास तक नहीं जा सकते, और वो वहाँ पर धैर्य के साथ बैठकर वो छोटे छोटे मोमेंट्स लेते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। तो हम बस एक छोटा सा लाइक कर लेते हैं ना, कितना बड़ा काम है बस उस एक फ़ोटो के लिए वो जो करते हैं। तो मैंने कहा वाह यार, ये लाइन तो मतलब कहते ना दिल को लग गई। तो मैंने उससे कहा कि भाई ऐसे कौन कौन से सबसे बेस्ट टाइगर रिज़र्व है, क्योंकि हम सभी को पता है कि टाइगर रिज़र्व्स कितने ज़रूरी होते हैं। बाघों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बाघ बचेंगे तो जंगल बचेगा, जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो फिर हम ऐसे गाने सुन पाएंगे, है ना। तो चलिए ऐसे ही बातों को जारी रखेंगे।

हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल टाइगर डे, और हमने यानी मैंने मेरा अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया कि जब मेरी बात मेरी एक सहेली आरोही से हो रही थी तो हमने बातचीत की, हमने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, और मेरे ऐसे कई सारे फीमेल फ्रेंड्स रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से सच में जब जानवरों की बात होती है तो चाहे फिर वो टाइगर हो या एक छोटी सी बुलबुल हो या एक छोटा सा तोता क्यों ना हो, मुझे अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना, उनकी बातें करना, या यदि कोई उनकी बात कह रहा हो तो मैं उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करती, क्योंकि ऑफकोर्स एक प्यार का असली वर्जन जो होता है ना वो जानवरों के पास होता है, क्योंकि वो बोलते नहीं है ना, और जो बोलते नहीं है उनका जो प्यार और प्रेम दिखाने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से भी और एफएम रेनबो की तरफ से भी हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर डे, और मैं सच में आशा और उम्मीद करती हूँ कि बस हमारे सारे जानवर जो है, हमारी जो बाघिन है, हमारे जो बाघ है वो सुरक्षित रहे। और उसी के साथ अब हमारा जो ये लव यू जिंदगी का कार्यक्रम है यहाँ पर समाप्त होगा, लेकिन ये एक अच्छे से मीठे से गाने के साथ जो आपको कहीं और बहा ले जाएगा।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

अच्छा, तो जरा एक नजर अपने घड़ी पर डालिए, अब बज रहे हैं 6 बजकर, नजर गई कि नहीं गई, 6 बजकर 21 मिनट पर हम सुन रहे हैं FM रेनबो विथ योर सखी RJ रिद्धि। और अब हमारा कार्यक्रम अंदाजे बयां शुरू हो चुका है, और जिस तरह से मैंने कहा कि भाई घड़ी पर नजर डालिए कि मैं समय सही बता रही हूँ नहीं बता रही हूँ, या आपको भी जानने की इच्छा है कि क्या समय हो रहा है, कितना अच्छा लगता है ना जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं और समय हमें वो समय बताए कि जिस घड़ी में जिस समय आपका दिन अच्छा हो। यानी समय जो घड़ी पर दिखता है वो हमें धैर्य रखना, बदलाव स्वीकार करना, हर पल का सदुपयोग करना सिखाता है कि भाई यार 6 बजकर 21 मिनट हो गए हैं, 6:30 बजने वाले हैं, मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है, हाँ मेरे तो सारे काम हो गए, मतलब काम हो जाए ये सिखाता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है ये समय। समय मुख्य रूप से संयम, बुरे वक्त में हिम्मत ना हारना और शांत रहना सिखाता है। कहते हैं ना परिवर्तन का नियम, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये नियम है। सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं लेकिन समय नहीं बदलता। यानी समय अपने गति से, समय अपना काम भरपूर रूप से करता है, और साथ ही हमें भी कहते हैं ना कि एक सुई चुभाते रहता है कि देखो मैं तो टक टक टक टक टक चल रहा हूँ लेकिन तुम चल रहे हो कि नहीं, तुम अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं। आज गुरु पूर्णिमा दिन है, यानी वो दिन जब हम सभी अपने जीवन में हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे गुरु, यदि आप संगीत कहीं से सीखते हो या कहीं पर आप नृत्य सीख रहे हो या कोई भी आप कलाकारी के क्षेत्र में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे ऐसे तो कोई बड़ा कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन जब वो आपके जीवन में आया तो उसने एक ही लाइन में शायद आपको सिखा दिया कि जीवन कैसे जीते हैं, या फिर कोई वो व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है कि यार तुझे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, उसकी सलाह मानकर आपका भला हुआ हो, या फिर एक छोटी सी चींटी जो हमें सिखाती है कि यार जान तो उसको भी प्यारी है, जब हम एक गोला करके उसको अटकाने की कोशिश करते हैं ना तो चींटी अपनी जान बचाने के लिए कितना संघर्ष करती है। तो नजरिए का एक कहते हैं ना फर्क है कि अगर आप देखो तो आपके आसपास चीजें भी जो निर्जीव है वो हमें सिखाती है, और जो जो हमें सिखाता है हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आज सभी को, जो भी हमारे श्रोता और जो भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपको RJ रिद्धि की तरफ से, FM रेनबो की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही हम सभी एक दूसरे को नई नई बातें सिखाते रहेंगे, सकारात्मकता सिखाते रहेंगे। और एक और बात जो मैंने जानी है कि बुरी घड़ियां या कह सकते बैड डेज, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सब कुछ सही सही हो तो हमें सीखने मिलता है क्या? नहीं ना। तो बस ऐसे ही अंदाजे बयां में हम इन्हीं सारे शिक्षकों की बातें करेंगे और साथ ही साथ गाने भी सुनते रहेंगे। तो आपको बने रहना है सिर्फ FM रेनबो 107.1 पर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त।

0: बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

अंदाजे बया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि को, जहां मैंने बात शुरू की थी समय। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर समय से लेकर मैं पहुंची एक छोटी सी चींटी के उदाहरण पर कि एक छोटी सी जो चींटी होती है, मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी, यदि समय मिला हो या बचपन में कभी, तो हमने कुछ काम और करते वक्त एक चींटी को ऑब्जर्व किया होगा कि वो क्या करती है। चींटी हमें लगातार मेहनत करना तो सिखाती है, कभी हार ना मानना और मिलजुल कर रहना सिखाती है। और कहती है ना कि आप कितने भी कोशिश कर लो, वो अपना 100% देती है। मैंने एक बात जान ली, जब चींटियों को मैं देखती हूँ तो नन्ही चींटी छोटे छोटे दाने बनाकर, गोले बनाकर, अच्छा उनको इतनी भी तकनीकें पता है कि हम जो हमारा भोजन है, उनका जो भोजन है वो कैसे गोल गोल गोल उसको मोड़ कर, उसको टर्न लेकर, ताकि वो छोटी सी जान इतना सा सामान कहाँ उठा पाएगी। तो बड़ा प्यारा नज़ारा होता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलने पर भी हिम्मत नहीं हारती है। हमारे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम बहुत छोटे छोटे कामों में भी हिम्मत हार जाते हैं। कड़ी मेहनत वो बिना रुके दिन रात काम करती है और अपने भविष्य के लिए खाना जमा करती है, मतलब, और वो अकेली नहीं है, साथ में काम करती है। तो साथ ही साथ वो हमें एकता की ताकत भी बताती है। सभी चींटियां मिलकर काम करती है और एक दूसरे की मदद करती है। मतलब अगर हम अपनी आंखें खोल कर देखें तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं बहुत सारे लोगों से, या बहुत सारी गतिविधियों से, या छोटे छोटे प्राणियों से। तो बस इसी के साथ मैं तो कहूँगी कि अपने आसपास ऊपर नीचे देखना है कि आपको कौन सा जीव या कौन से ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स आपको सिखा रहे हैं कि तुझे कैसे बैठना, कैसे उठना है, मुझे खाना है या नहीं खाना है। तो बस आगे ऐसी ही छोटी छोटी बातें हम जारी रखेंगे इस प्यारे से गाने के बाद।

हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। मिर्ज़ा गालिब की शायरी इंसानी जिंदगी की तरह अनगिनत चेहरों का कोलाज है। वो कभी आशिक नजर आते हैं, कभी मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं, कभी खुदा के आगे सर झुकाते हैं, कभी जन्नत और दोजख के तसव्वुर को दिल के बहलाने का फरेब ठहराते हैं, कभी बड़े से बड़े गम से टकरा जाते हैं, कभी मामूली से दुख में टूटकर आंसू बहाते हैं। ये सारे चेहरे मिलकर वो शख्सियत बनाते हैं जो अदब की तारीख में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के नाम से जाने जाते हैं।

कहते हैं कि यदि आपको किसी से कुछ सीखना हो तो एक नजर पानी की ओर डाले। पानी हमें क्या सिखाता है? निरंतर और धैर्य रखना और बस बहते रहना। जिस तरह पानी हर परिस्थिति में ढल जाता है और रास्ता खुद बना लेता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना शांत रहकर करना पड़ता है। पानी जिस बर्तन में जाता है ना, उसी का आकार ले लेता है। ये सिखाता है हमें क्या कि भाई आकार ले लो, समय परिवर्तन है। यानी अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को बहुत सारा धैर्य और बहुत सारी शक्ति दीजिए। लगातार बहने वाला पानी कठोर से कठोर पत्थर को भी काट देता है। यही तो हमें बनना होता है, यही तो हमें बनना होता है। तो क्या हम इतने कठोर बन पाएंगे? यानी हाव भाव से नहीं, अपने जीवन में स्ट्रांग बन पाएंगे,

हमारा प्रोग्राम अंदाज़े बयां अब बस ख़त्म होने वाला है और अंदाज़े बयां में हम बात कर रहे थे कि आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन में हम सभी हमारे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज टेक्स्ट करते हैं, जब बच्चे टीचर्स को मिलते हैं तो वो फूल का गुलदस्ता देते हैं, कोई चॉकलेट्स देता है, सब अपने अपने तरीके से कह सकते हैं कि गुरु दक्षिणा देने का प्रयास करता है। अब पहले से लगाकर अब तक और आने वाले समय में हर बार हर जगह कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा या मिलेगा आपको जो ये जो छोटा शब्द है और काम बड़ा गुरु इसका काम करता है। हमें गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता किसी किसी मुद्दे पर। कई बार लोग खुद से आकर आपकी मदद करना चाहते हैं, सलाह मशवरा देते हैं और अगर वो सही है, अगर आपका भी ज्ञान और उनका भी ज्ञान सही है और अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो दिल से दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि यार तूने मेरी मदद कर दी, थैंक यू सो मच। ट्रेन में भी सफ़र करते समय कभी कभी हम एक दूसरे की मदद कर लेते हैं कि क्या तुम्हें ये नंबर डायल करना आता है, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, और यदि हम उनकी मदद कर दें तो वो हमें कहते हैं थैंक यू सो मच बेटा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु पूर्णिमा जो दिन है, ये जो दिवस है, इस दिन हम सभी को याद करते हैं और साथ ही साथ उनको भी हम याद करते हैं कि भाई उसने उस समय मेरी मदद की थी, मुझे राह दिखाई थी, रास्ता दिखाया था। होता है ना कई बार कि आप एक अनजाने रास्ते पर चले जाते हो, वहाँ कोई अपना नहीं है कहने को, और अचानक से कोई मददगार मिल जाता है, आपने सोचा भी नहीं था कि कोई आएगा आपकी मदद करने के लिए। तो गुरु क्या करता है, मदद ही तो करता है। जीवन एक रास्ता है, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गड्ढे सब कुछ आएगा और उसे पार कैसे करना है, इस गेम को ख़त्म कैसे करना है, सर्वाइव कैसे करना है, और सर्वाइव कैसे करना है, इससे मुझे याद आया कि पेड़ पौधा पत्ता पानी सूरज ये सब जो प्रकृति की देन है, ये भी सबसे बड़े गुरु हैं क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बस हमें शांत बैठकर उन्हें देखने की ज़रूरत है। तो अंदाज़े बयां का ये जो प्रोग्राम है फिलहाल यही ख़त्म होता है ये इस खूबसूरत गाने के साथ, और फिर हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे जहां हम तुम बातें करेंगे, यानी कि आप गाने देंगे और मैं गाने बजाऊंगी। मिलते हैं।

क्या बात है, क्या बैक टू बैक तीन गाने बचे हैं। और इन गानों की फरमाइश आई थी राकेश माथुर फ्रॉम पुणे, अरविंद कुलकर्णी जी और प्रणव शिंदे जी। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है और जैसे जैसे हमारे पास समय होगा मैं उनका नाम और गाने सुनाती रहूंगी। फिर से स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि और हम चला रहे हैं कार्यक्रम हम तुम ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम जब बात करते हैं गानों की, हम जब बात करते हैं ये हम तुम वाला जो खास प्रोग्राम रखा गया है, इसमें मजे की बात ये है कि हम आरजीज को भी दूसरों के चॉइसेस, दूसरों के टेस्ट फ्लेवर्स गानों के मामले में पता चलता है और हमें बड़ा मज़ा आता है कि वाह क्या गाने हैं। कोई 1999 का है तो कोई 2010 का है तो कोई 2026 की भी कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो बस ऐसे ही खूबसूरत गाने को इन्जॉय कीजिए मेरे साथ।

ఎల్లో 9 8 2 1 0 2 6 2 1 2 బిపిఎల్. అరే 9 8 2 0 0 2 6 2 3 5 మ్యాక్స్ టచ్.

व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, क्या बात है। खूबसूरत गाने, और इन पिछले तीन गानों की फरमाइश की थी फिरोज सिगनपुरिया जी ने, पंकज मोहर जी ने और विजेंद्र घटोल जी ने। और इसी के साथ हम तुम कार्यक्रम में बने रहेंगे, और भी खूबसूरत गाने हमें सुनने हैं, तो बस एंजॉय कीजिए इन गानों को।

हमारा प्रोग्राम हम तुम बस अब खत्म होने के कगार पर है और आपने इतने प्यारे गाने सुने। और भी आगे कार्यक्रम इसी तरह चालू रहेगा, लेकिन मैं आपकी सखी आरजे रिद्धि अभी के लिए विदा लूंगी। पर आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि गानों का दौर तो भाई चलता ही जाएगा। और ये जो गाने, जो फरमाइश हम करते हैं समय रहते, जितनों की फरमाइश हम पूरी कर पाए, हम पूरी कोशिश करते हैं। पिछले गाने थे दीपा पलकर जी की फरमाइश पर, फिर उसी के साथ हमने ये बहुत ही प्यारा सा गाना बजाया बलकरण वर्मा जी की फरमाइश पर, और साथ ही साथ ऐसे ही आगे गाने चलते रहेंगे। तो बस बने रहिए आप FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स पर।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
5: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए

0: युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है।

0: 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काईरूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काईरूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के

मुद्दे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तानिया हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो आज से इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई रिश्ता आपके साथ है तो उसकी मौजूदगी को महसूस कीजिए। हर मुस्कुराहट, हर बात, हर पल को जी लीजिए बस, क्योंकि मोहब्बत की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि वो हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब तक रहती है दिल के बेहद करीब रहती है और बाद में बस उसकी यादें रह जाती हैं।

आप सुन रहे हैं रंग महफिल जरी के संग। चेहरे पे हंसी रख के दिल में दर्द छुपाया है, हमने किसी से अपना हाले दिल छुपाया है। चेहरे इस किताब को पढ़ तो हर कोई लेता है, पर समझ बहुत कम लोग पाते हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आती जाती हर मोहब्बत, चलो यूं ही सही। इस गजल को अल्फाज दिया है चंदन दास ने, पेशे खिदमत आपके लिए।

102.6 पर आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंगे महफिल जरी के संग। चेहरे सिर्फ एक पहचान नहीं होता, ये हमारे जज्बात का एक आईना होता है। कभी ये मुस्कान बनकर दिल जीत लेता है तो कभी खामोशी में हजारों बातें कह जाता है। कुछ चेहरे ना ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही अपने से लगते हैं। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, अगली गजल अलका याग्निक और जगजीत सिंह की आवाज में है।

दिल में हजारों उलझने और बेलगाम ख्वाहिशों के मेले के बावजूद भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो वाकई ये काबिले तारीफ है, क्योंकि हम सभी की जिंदगी में ये तो सैकड़ों शिकायतें हैं जिंदगी से, मगर कोई एक वजह ही काफी होती है मुस्कुराने के लिए। आशा जी और गुलाम अली की आवाज़।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरिंग के संग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब चारों ओर भीड़ होती है मगर दिल किसी एक शख्स की कमी महसूस करता है। तब लगता है कि दुनिया की सारी रौनकें फीकी है क्योंकि सुकून तो सिर्फ एक उसी के साथ है। अगली गजल आप तक पहुंचा रही हूँ उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में। रंगे महफिल सुन रहे हैं आप।

0: से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
6: स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:47। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, इस वक्त मैं आपके साथ जरी। एक खूबसूरत शेर याद आया, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। यही तो वो गजलें हैं, या यूं कह सकते हैं कि गजल की ताकत है कि कम लफ्जों में गहरी बात कही जाती है। गजल हमें सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना भी सिखाती है। जबी तो आज की नई पीढ़ी को भी गजल बेहद पसंद आते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया, लाइव मुशायरे और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स ने गजल को बहुत उम्दा बना दिया है और बहुत ज्यादा अजीज बना दिया है। तो इसी बात पर जगजीत साहब की आवाज़ में वही वाली गज़ल आप तक पहुंचा रही हूँ, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

मोहब्बत में कोई खत मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, लिफाफे में फकत तितली का पर अच्छा नहीं लगता। तुम अपने दिल के कैमरे में मुझे क्यों कैद करते हो, मुसाफिर हो, मुसाफिर को तो घर अच्छा नहीं लगता।

कुछ जा रहे हैं हम इस वादे के साथ कि कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आपकी याद आती रही और रंग महफिल में वैसे ये कहना चाहेंगे आपसे कि हमसे मत पूछिए कि किधर जाएंगे, थक गए हैं बहुत, अपने घर जाएंगे। बेवजह ही हम सब परेशान हैं जिंदगी के लिए, जिंदा कहाँ है कि मर जाएंगे। तो ये कतरा कतरा जिंदगी में जो आप गम पीते हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है तो जी लीजिए इसे बहुत ही सुकूनियत के साथ। अल्लाह हाफिज़।

मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। कहा, इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संगठनों के साथ बैठक की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ा। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर हमले किए, जिसमें करीब 20 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई है। वहीं महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और मैं हूं आपके साथ आरती। और दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम 08 शो का।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

बेहद खूबसूरत गाना, लेकिन क्योंकि बाध्यताएं हैं अपनी अपनी, समय की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंद हैं, और क्योंकि अब वक्त ये कह रहा है कि आपको गीतों से समाचार की दुनिया तक लेकर जाएं, अवगत कराएं उन प्रमुख न्यूज़ हेडलाइन से जो इस घंटे तक उपलब्ध है हमारे पास, तो आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब भी लापता हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस पर चिंता जताई है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियन जैस्मिन लांबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई, पदक सुनिश्चित करने वाली भारत की 10वीं मुक्केबाज बनी। वहीं भारतीय एथलीट अनिमेश कपूर ने पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 1:02 कुछ ही देर में हाजिर होते हैं कार्यक्रम सुहानी रात लेकर इन्हीं मीटर्स पर मेरे साथ, और मैं हूँ रजत आपके साथ। इस कार्यक्रम को लेकर 90s के दशक को लेकर एक खूबसूरत सहजता के साथ, संयोजन के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही देर में।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत 90 और आसपास के दशकों के इस खूबसूरत गानों की बहुत ही दिलकश और बहुत ही संजीदा महफिल में। मैं हूं रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ देश के हर कोने हर और दुनिया के हर हिस्से की पहुंच बनाने वाले हमारी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी। आप जहाँ भी हैं, कितनी ही दूरी पर हों, आप हमारे सभी शो सुन सकते हैं और ये शोज़ भी खास तौर पर। तो इस बज में 90 के दशक में आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रोग्राम का नाम फिर से बता दूं, सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

तारों में चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

ये था प्रोग्राम सुहानी रात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। रात के ठीक 2 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 4 लोगों की मौत और 4,00,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की खबर है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 62 लोग घायल और कई अब भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियन जैस्मिन लांबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पदक सुनिश्चित करने वाली भारत की 10वीं मुक्केबाज बनी। वहीं भारतीय एथलीट अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय, थारून मुन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम जुड़े हैं। पूरी दुनिया, पूरे देश के हर कोने, हर हिस्से से सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब तक भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। वहीं लंबी कूद में खिलाड़ी मुरली शंकर ने 8.9 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तानिया हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए।

यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सुबह के 3:20 बता रही है घड़ी और वक्त हो गया है, बल्कि वक्त से तो आगे हम निकल आए थोड़ा थोड़ा। प्रोग्राम शुरू हो चुका है मिडनाइट मेलोडीज आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप तो आप समझ ही रहे हैं कि आपको डाउनलोड कर ही लेनी चाहिए। जैसे ही आप कहीं फ्रीक्वेंसी से बाहर जाएंगे, वहाँ आपको ऐप ही काम कराएगी और पहुँचाएगी हम तक और हमें आप तक। आप सुन रहे हैं इस वक्त मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी रजत के साथ। चटपटे गाने आपके लिए लेकर आएंगे, नए पुराने मिक्स करके, नए तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ 90s और आसपास को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले भी जाने की कोशिश करेंगे। रही आप सिर्फ मेरे और मेरे साथ, हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किया। वहीं लंबी कूद में खिलाड़ी मुरली शंकर ने 8.9 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय थारून, मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।
2: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

जिस तरह शाम का

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सारेगामा। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान से संबंधित

15 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय, थारून मनिपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर पर प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।